कल आषाढ़ी एकादशी है, विठ्ठल के रूप का गुणगान करने वाला एक बहुत सुंदर गाना स्वामी के सामने।

इसके बाद एक बहुत ही सुंदर भजन गाऊंगी। उसके बोल है, मेरे हृदय की धड़कन में बज रही साई नाम की धुन, साई नाम गाते गाते नाचे मन छुन छुन, साई नाम की धुन। इसका जो एक अंतरा है वो स्वामी कृपा से मैंने लिखा है। प्रशांति वासा परती साई मेरे साई सुन, प्रशांति वासा परती साई मेरे साई सुन, हे परमेश्वर परतिपुरीश्वर प्रेम स्वरूप भगवन, हे परमेश्वर परतिपुरीश्वर प्रेम स्वरूप भगवन, जग उद्धारण कार्य में अपने तू मुझको भी चुन, जग उद्धारण कार्य में अपने तू मुझको भी चुन, साई नाम की धुन बज रही साई नाम की धुन।